ये आज्ञा करम है। सर्व बलदारियो अनाति अनंत देवियनी मोक्षापन मातावन कान्यमारिय तुमांगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमार अटोबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतु सिहिकरनो तुमियगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुर वलिन हा अनवरत मरनेन गलवेम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।

याज्ञा करम है सर्व बलदारे अनाथ अनंत दिव्यनी मोक्षांपन मातावन कान्यमार्य तुमांगे गतहा प्राण्य उबिगे श्री कुमार अटोबिन वासस्थान अक्वन लिस इस्प्रीतु सांतु अरमीन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतु सीकरनो तुमीगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरुवलिन हा अनवर्वत मरनेन गलवेम सलसो मेनव मे की दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सुहासे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।

याज्ञाकरं सर्वबलधारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतुयुक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसु मेनव मे की दे अपगे स्वामी जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपट लबेवा।

0: याज्ञा करम है सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षां पन मातावन कान्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसु मनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन
1: कथा करन्न दुरकथनांक 077 32 65 133 071 83 582